तेरा थां भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोने। सुंदर स्वामी धाम, मालक दा दर सोना है। एक गल दा ख्याल रखना, मालक दा दर केड़ा है। सो दर के हा, सो कर के हा, जित दर वसे कवन दर कही है। दरा भीतर दर कवन लहे।

कबीर मानस जंदुर्लभ है, होतना बारंबार जो बंथल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा।

जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पाई नहीं बाणी, पज ले रे मन सार पानी। अब ना पजस पजस कब पाई, आवे अंत ना पजिया जाई। ए तेरे अवसर ए तेरी बार

गोविंद भजन बिनंदर थे सब काम जो किरपन के नरार्थ दाम। गोविंद भजन बिनंदर थे सब काम जो किरपन के नरार्थ दाम। फिरत फिरत बहुते जुगहारे हो

जब तू नहीं रहेगा फिर कि होगा कि महाराज राजकुमार का वो राजा होगा। साहब कह लगे तेन भरोसा है वो रहेगा राज रहेगा तेन पक्का भरोसा है। घबरा गया कह लगा महाराज कुछ नहीं कह सकता। साहब कह लगे जो पिछे तुरिया आ रहा हर कोई कहना रहा सी मेरा है हुण तू कहना है मेरा है जे सुखी साधी राजी रहे राजकुमार तो कहेगा मेरा है इन्होंने सारे चो है कि फैसला करेगा। सोचिया सोच के घबरा गया कह लगा महाराज किसी का भी नहीं सब छड़ के तुरे गए मैं भी छड़ के तुर जाना कोई खो भी सकता सी मेरा नहीं। साहब कह लगे इसे करके तक कुछ अपना अर्पण करेगा तो गल बन कह लगा सतगुरु ये शरीर हाजिर है। साहब कह लगे शरीर तेरा अपना कि महाराज मेरा इसे शरीर का ना ही सुधर सैन है मेरा ही शरीर है। साहब कह लगे इन भुख लगती है तेन पुछ के लगती इन नींद आ तेन पुछ के आन दुख आ तेन पुछ के आता भला कोई चाहता है कि मेरे शरीर को दुख आ इनू कोई तकलीफ आउंदी है कि नहीं महाराज अपने आप ही मेरी मर्जी तो बारा ही सारा कुछ हो जाता है। जिसले मैं नहीं खाना चाहता उसले भुख लगी होंगी जिसले मेरा खान नू चित करता उसले शरीर इजाजत नहीं देता। साहब कह लगे फिर तेरा किवें होया कि महाराज मेरी मर्जी नाल चलता तक कोई नहीं। साहब कह लगे इसे करके क्या कुछ अपना दे कह लगा महाराज वाकई ठीक है शरीर मेरा अपना नहीं ना मैं आप बनाया ना मेरी मर्जी चलता है महाराज मेरा मन हाजिर है। साहब कह लगे मन तेरा है कह लगे महाराज मन तो फिर मेरा ही है। साहब कह लगे सोच के दस जद तू इथे बैठा है मन इथे ही सी कि नहीं महाराज कई थाई फिर आया। साहब कह लगे इंज कर फिर दो पल इस नू रोक के रखी जे ता इथे ही रहे ते तू अर्पण कर दे जे ना रुके ते फिर तेरा कादा होए। अखां मीटियां मन नू रोकन दा जतन कीता सच जानना जिवें जिवें रोकन दा जतन करिए ना तां साहब कहिंदे ने मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। ये काबू ही नहीं आता बड़ा सोचिया यह टिक जावे नहीं टिकता कदे किधरे फिरदा है लखां कोहां ते फिरदा है आकाशां पतालां च फिरदा है हार गया सिर मारिया कहन लगा महाराज नहीं काबू आउंदा नहीं टिकता। साहब कह लगे फिर तेरा किवें होया चरणा ते ढह पिया कहन लगा साहब जी मैनू दसो फिर मैं की देवां मैं की अर्पण करा। साहब कह लगे आ मैं ही अर्पण कर दे आ मैं आ जिहड़ी तेरी मैं है ना जिहड़ी कहिंदी है शरीर भी मेरा मन भी मेरा धन भी मेरा राज भी मेरा संतान भी मेरी संसार सारा ही मेरा जिन्ना चिर यह तेरी मैं ते मेरी तेरे अंदर मौजूद है भगती की गल शुरू कोई नहीं होनी जे तां यह गल शुरू करनी हूं ते मैं दे दे वैराग विच आ गया कह लगा साहब जी फिर मैं भी हुण तुसीं आपे ही लै लो मैथों यह भी गुण दित्ती जानी जब सारा कुछ मेरे काबू च नहीं है मेरा अपना कुछ भी नहीं है यह मैं भी पता नहीं कितों आ गई है तुसीं आपे ही कढ लो जिसले यह भावना आ जाए फिर मैं निकल ही जाती ते जिन्ना चिर मैं मौजूद है ना उन्हां चिर रब नूं सियाणा गुरु नूं सियाणा नहीं मनिया जांदा ते जिन्ना चिर गुरु नूं ते रब नूं सियाणा नहीं मनी उन्हां चिर मनमत चलदी रहिंदी। साहिब कहिंदे जिस दिन दी मनमत मिटाई है ना उस दिन दा इह मिलिया है अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो मंतानी गुरु ने मंत्र दित्ता है हीरिया वर्गा कीमती मंत्र जिसते सदका डिगे ना डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृप्तानी हुण तां ऐसा हो गया है ओए जो बीच हम तुम कछ होते तिन की बात बिलानी जो तेरे मेरे विचकार मैं ते तू दी गल सी ना ओ खत्म हो गई ओए जो बीच हम तुम कछ होते तिन की बात बिलानी खत्म हो गई अलंकार मिल थैली हुई है तांते कनिक वखानी जिवें बहुत तरह के गहने कट्ठे करके एक थैली च पा दिए ते कहिंदे ने सोना है फिर उन्हूं कले कले नूं गोखड़ू हार चेनी कुछ नहीं कहिंदा ओ कहिंदे ने सोना है जे गाल दईए ते फिर उन्हूं की कहांगे मिट गए गहने मिट गए सिर्फ सोना रह गया। साहब कहिंदे ने जिस वेले मैं अपना आपा मिटा दिता मैं मेरी मिटा दित्ती फिर तेरे नाल मैं इस तरह ही रल गया कनक जिस तरह सोने ते गहने दा कोई फर्क नहीं जिस तरह पानी ते पानी दे बुलबुले च कोई फर्क नहीं तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनिक कटिक जल तरंग जैसा कोई फर्क ही ना रह गया मिट गया मैं तेरे विच रल गया ते हुण ओ कुछ प्राप्त होया है प्रगट्यो सहज प्रगट्यो जोत सहज सुख सोभा बाजे अनत बाणी जीवन संगीत नाल भर गया गुजे संगीत नाल भर गया अंदर सहज आ गया है बाहर शोभा बन गई प्रगट्यो जोत सहज सुख सोभा बाजे अनहत बाणी कहो नानक नेचल घर बांधियो गुर दी गुर कीओ बंधानी गुरु ने ऐसा घर बन दिता है जिहड़ा कदे डिगण डोलण वाला नहीं कदे टहण वाला नहीं ऐसे घर दा वासी मैनू बना दिता है ऐसी अवस्था च पहुंचा दिता है। पर पहुंचिया कदों जद मैं यह समझ लिया

0: चंद ले ही देख, तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों लगूंगे?
0: खुंडकारा लकड़ी दे उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उते पटरा टिकाया जांदा।
1: पटरा क्यों होंदा?
0: जिस उते धोबी कपड़े धोंदे ने। भगत नामदेव जी दास दे छीने सन, कपड़े धोंदे धोंदे हो अपनी आत्मा नु हरि नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम की उन्नी टेके जिन्नी के पटरे नु खुंडकारे थी।

0: सब इस तुकनो गायन करो और सिंह दिस द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

का सरहंद सरसा नदी तो विछड़ के माता गुजरी जी अते छोटे साहबजादे मुगल सरकार की कैद विच साका सरहंद।

जे जे देख इस तन में तारे जेड़े अपने तन नू लोगों नू पसान वाल के अपना तन भेखी बनाउणगे जे जे देख इस तन में तारे ते प्रभ जन किछ कह ना बिचारे समझ लियो सब जन मन माही इत फिर सब अखर आ गया समझ लियो सब जन मन माही डिमन में परमेश्वर नाही जे जे कर्म कर डिम दिखाई तिन पर लोगन मो गत नाही परलोक च उन्हां नू गति बिल्कुल नहीं मिली जीवित जगत जींदियां होया वो बड़े सुखी रहेंगे क्यों के अमीर अपनी माया दे के उन्हां नू सुख देंगे जीवित जगत जगत के काजा स्वांग देख कर पूजत राजा स्वांगन में परमेश्वर नाही स्वांगन में परमेश्वर नाही हो फिरे सभी को काही किथे जी परमेश्वर अपना मन पर मुझे आना जिन्हें अपना मन अपने हाथ च पकड़ लिया पार ब्रह्म को तिने पछाना महाराज भेखी ने उन्हां की हाल होएगा तो उन्हां चेलियां का की हाल होएगा लो फिर हम सारे पढ़ियो भेख दिखाए जगत को लोगन को बस की अंत काल का ती कटियो बस नरक माली तुसा सारे ने नहीं पढ़िया सारे पढ़ो एक दिखाए जगत को

जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। लोग कैंची ना मुंदे है, ये धर्म की कैंची ना मुनी जांदा, लोगन लुटी जांदा। जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। नासा मूंद करे प्रणाम, नासा मूंद के नमस्कार करन दिया। नासा मूंद करे प्रणाम, फोकट धर्म ना कौडी काम। ये कुछ हिस्सा राधा स्वामी च है कि इंद्रियां बंद करके ते अंदर कूं कूं सुननी। नासा मूंद करे प्रणाम, फोकट धर्म ना कौडी काम। फोकट धर्म जिते जग करी, नरक कुंड पीतर ते परी। हाथ लाए सुर्ग ने जाऊ। एक्टिंग करनी अनेक प्रकार की। हाथ लाए सुर्ग ने जाऊ, जो मन जीत।

जे जे बात करता अहंकार, जे जे बाद बाद झगड़ा अहंकार वाला झगड़ा जी होमे बदे। कई बार परमार्थ की विचार करद होमे बद जाती, वेख्या ना मैं जित लिया, मेरे सामने कू नहीं सकिया, बोल नहीं सकिया, मेरे सामने ताकत नहीं पई कि दूजी गल कर सके, वेख्या जितया। कहिंदे उथों रब उथों चला गया, जिसने आ चीज आखी ओहदे कोलों रब चला गया। जे जे बात करता हंकार, तिन ते भिन्न रहत करता, जान लियो हर जन मन माई, वेद कितेव दिखे हर माई। ये झगड़ा मत करो, इत्थे ते रब है ही नहीं। वेद कितेव दिखे हर माई, जान लो हर जन मन माही, आंख मूंद को डिंब दिखावे, अंदर की पदवी कह पावे, आंख मीच मग सूझ न जाई। ऐस दुनिया का रास्ता नहीं दिसता, ते अगला कौन वेखेगा। आंख मीच मग सूझ न जाई, ताहे अनंत

जो था अब है और आगे हुए है। पूछा मारा तुम्हारा गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह साहब ने पूछा गया तुम्हारा गुरु कौन है, कहते आओ मैं तुम अपना गुरु दसा। कोट किंद्र करे जे के जिन्हें करोड़ा इंद्र बनाए ने, कोट के इंद्र करे जे के कई कोट उपिंद्र बनाए खपायो, दानव देव फनिंद तारा तार भूत भविख उपाय मटायो, आज लगे तपसा दिता है सिर ऊ ब्रह्मा किछ पार न पायो। आज तक शिवजी ते ब्रह्मा जिन्हों का तप करते ने ते उन्हों का अंत का पता नहीं लगा। आज लगे तपसा दिता है शिव ऊ ब्रह्मा किछ पार न पायो, वेदक देव वेदक देव ना भेद लख्यो जो

जाऊ न ठगियो सब लोग शीश जटा नख हाथ बढ़ाए जटा बना लिया ते हथां दे नौ बदा लो ते ध्यान ला के बैठ गए लोगों नू ठगण वास्ते ध्यान लगाए ठगियो सब लोग शीश जटा नख हाथ बढ़ाए लाए बिभूत फिरियो मुखी उपर स्वाह मल लई लाए बिभूत फिरियो मुखी उपर देव अदेव सबे डैकाए चंगे माड़े सारे लुट ले मूर्ख ते स्याणे सारे लुट ले इन्हें किसी ने छड्डिया ही नहीं तू क्यों धोखा खा गया कहिंदा चंगा भला मैं स्याणा सा मेरी माती मारी गई ऐसे चलाक लोग सन लाए बिभूत फिरियो मुखी उपर देव अदेव सबे डैकाए लोभ के लगे फिरियो कर ही कर जोग के नास सबे बिसराए आखो प्यारियो श्रीवा सारे नहीं आख्या सारे गज के आखो श्रीवा एक बार आख्या ते हजारां दा फल मिल गया इसलिए इस सस्ता सौदा फिर कर लो सारे गज के आखो लोग दा मारिया होया घर घर विच चला गया कि मेरा सत्कार कर मैंने लोग नमस्कार कर पर जोगी नू अपने नियम भुल गए इनू ये नहीं पता कि जोगी बनी किवें दा किवें बनी दा जिवें सिख नू नहीं पता कि सिख किनू कहिंदे ते पढ़ लेना असा राज करेगा खालसा आ की रहे ने को बिल्कुल गलत चीज ये इथे मलमा नहीं चल सकेगा ये गलत है साडा योग के न्यास सबे बिसराए जिहड़े योग दे नियम सन योग दे जिहड़े नियम सन वह इन्हू भुल गए नहीं पता नहीं कि योगी कहिंदे किनू नहीं पर यह मूँह ते सवाल ला के योगी बन के क्या फिरदा जरूर जिवें इन्हू नहीं पता कि सिख किनू कहिंदे नहीं कहिंदा जरूर मैं अपने अपने सिख ते बड़े मान च पढ़दा राज करेगा खालसा ज्यों ज्यों पढ़ी जांदा त्यों त्यों खुशी जांदा नुकसान हुंदा जांदा यह क्यों नुकसान हुंदा है यह पढ़न वाल पै गया ते प्रैक्टिकल किसी अंदर चीज ना जीवन लिया गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ना समझिया सिर पढ़ छड्डिया और पढ़िया भी कवेले कवेले पढ़िया अज पता ही नहीं किसे नूं कि राज करेगा खालसा पढ़िया किस वेले जाना है जे 11 बजे भोग पै गया तां भी पढ़िया गया 2 बजे भी पढ़िया गया 4 बजे भी पढ़िया गया मृतक ते भी पढ़िया गया सारे पासे पढ़िया गया ये खास नियम हन ये तख्तां नूं जाके पुछो कि राज करेगा खालसा नियम की और फिर अगों खालसे दे अर्थ करे कौन जिहड़ा डंडे खावे वो अर्थ करे क्योंकि तुसां अर्थ मन्ने नहीं पर आखे ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने पर अज नहीं मैं कहना भाई कभी फिर आवांगे फिर वेखी जाए आखे ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने हजूर कहिंदे जोग के न्यास सबे बिसराए इन्हू पता ही नहीं कि नियम की हन आ छोटा जा नियम गुरु रामदास सच्चे पातशाह लिखे आए मेरे गुरसिख आए मेरे तू मेरे गुरु के प्यारे सारे आ गए भज के सारे आ गए सारे गाउन लग पे सारे सुन लग पे सतगुरु ने आग्ञा दी सारी आई संगत जी सारे सारे सिख हो कहिंदे महाराज सारे ही तुहाडे सिख सारे ही तुहाडे सिख कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने चोज वरताया जे बीबी आवे ते पुछण बीबा तू किहदी सिखणी है वह अपने पति का नां लै दे जां इशारा कर दे मैं महाराज इहदी सिखणी सिख आया प्यारिया तू किहदा सिख है उन्हें फिर अपने घर वाल इशारा करता कि महाराज मैं यहाँ सिख सारे पूछया कोई एक अद्धा निकलिया कह लगे सारे अपने अपने सिख ते मेरा सिख कोई भी नहीं निकलिया

जे गौसिंबिया पे मैं करत जगते गए महापुरुष कहूं ना पछाना किसी नहीं पहचानी कड़ी महापुरुष कहूं ना पहचाना कर्म धर्म को कछु न जाना ना कर्म दस्या चंगा ना धर्म दस्या आख्या पूजा मेरी करो बस अवरल की आशा किछ नाही एक आस धरो मन माही कहते होर किसी की आस ना रखो बिना अकाल पुरख तो अवरल की आसा किछ नाही एक आस धरो मन माही आन आच आस उपजित कछ नाही वाकी आस धरो मन माही कोई परत पुराण को कोई परत पुराण कान सख्त बचाए के फोकट धर्म निदान कोई कुरान की पूजा कर रहा है कोई कुरान नु पढ़ रहा है हजूर कहने दोवे धर्म फोकट ने और इन्होंने अंत वेले साथ नहीं देना कान सख्त बचाए के फोकट धर्म निदान कई कोट मिल परत पुराना बाचत किते पुराण अजाना अंतकाल कोई काम ना आवा दाव काल काहू ना बचावा अंतकाल को काम ना आवा दाव काल काहू ना बचावा क्यों ना जब तको तू पाई अंतकाल जो है सहाई क्यों ना जब तको तुम पाई अंतकाल जो होए सहाय फोकट धर्म लखो कर परमा इन खाली समझो फोकट धर्म लखो कर परमा इन ते सरत न कोई करमा ए तारू प्रभ हमें बनाया मैं तो दुनिया का हनेरा दूर करने वास्ते आया एक कारण प्रभ हमें बनायो पेड़ पाख ए नोक पिठायो आखो श्रीवा लिहाज करांगा केवल सच दा करांगा दूजे दा किस दा करना नहीं एक कारण प्रभ हमें बनायो पेड़ पाख ए लोक पिठायो पेड़ दस के जिम तिन कही सबन उचरो जिमें मैनू मेरे वाहिगुरु ने कही है मैं सारे कह लगा मुखातब करके ए चीज याद रखनी डिंब विम किछ नायक ना करो एक तुम्हें भेख नहीं करना और एक वह मिच भुलेखे च नहीं पैना ए मैं बिल्कुल नहीं करना और ना सिख नू करन देना डिंब विम्ब किछ नायक ना करो मैं ना भेख करना ते ना वहम करना एक अकाल पुरख की ओट रखनी ते कहांगा कि लो प्यारे पे सारे तुसी कह लगे

फिर करो भाई पूजा, फिर करोड़ रुपया इतने वार दिता जाए ना तो आ जरा सुख है उन्होंने नहीं लभ सकता जरा तुम्हें प्राप्त हो गया। आओ पे शुक्र आके धनवाद करिए, गुण गाइए, साडा आया हुआ सफला हो जाए।

मित्र हुंदा ही होए जेड़ा मनुख दा भला लोची, जेड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे ले जा, भला फिर और दुश्मन दी की लोड़। जेड़ा अखौती मित्र मिले, मित्रता दे ना थले बुरे पासे ले तो बुराइयां वाले पासे प्रेर ले जा, गलत कम्मा वाले पासे ले तुरे, या जेड़े मित्र दे आया जीवन दा कीमती समा आ जाई तुरिया चला जा, गलत गल्लां विच निंदा चुगली विच गलत खेडां विच गलत कारियां विच मनुख दा कर्म परिष्ट हुंदा चला जावे, ओ मित्र नहीं दुश्मन है। क्योंकि जो कर्म असी करने ने उन दा फल साडे सामने होना, अज नहीं कल नू ऐस नहीं अगले जन्म नू साने कीते कर्म साडे सामने आ जाने। ते जेड़ा बंदा गलत कम्मा दी प्रेरणा करता है उहदे नाल वड्डा दुश्मन होर कौन होवे। पर मनुखे भुलेखे च पिया होया जिहदे नाल जी परच जावे, जेड़ा कोल बह के चार गल्लां करे सुने सुनावे ओनू असी मित्र समझने। हालांकि साहिबां ने पावन बाणी च बड़ी सख्त प्रेरणा कीती है, साहिब कहिंदे ने कर मित्राई साहब सिरसा साध स्यो निचल पावे था। जे मित्रता करनी है ना नानक कचड़िया स्यो तोड़, टूंड सज्जन संत पक्या, तू मित्र लभने ने ते पक्के मित्र लभ, कचिया बल्लिया दे नाल की मित्रता पौनी है जिन्हां दा अपना कोई स्टैंड नहीं। अज कम करते ने कल नू पछताउंदे नजर आउंदे, अज कुकर्म करते ने कल नू उन्हां कुकर्मां दे फल दे सामने रोंदे नजर आउंदे। निरा यही नहीं, ਇਹ ਜੇ ਕੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ, ਉਹ ਇਹ ਜੀਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ।

जिस सभा सोसाइटी के सामने जिस समाज के सामने असी मुजरम हाँ उस मित्र दे कोल आके बह जाण दे नाल फिर पंच कहिंदे ओ कहिंदे ने भई तू आ गई है तेरा मित्र इस करके छड़दे ने तेरे कहण ते छड़दे ने तू इहदी शादी भरना ते छड़दे ने तेरा मित्र इहते लिहाज करदे ने तेरा पुत्र इहते लिहाज करदे ने तेरे भरा करके छड़दे ने चंगे बंदे दा प्रभाव पैंदा ते जे किते उन्हां लोकां नाल जिन्हां ने दरगाह तक निभ जाना साडी सांझ होवे उन्हां दे सदका उत्थे भी बख्शे जा सकदे बल्कि उत्थे बख्शे जाण दी गल जे इक पासे रख दईए जीवन विच ही मनुख भले लोकां नाल मिल के उन्हां दी रंगण च रंगिया जा के ऐसी दशा आउंदी नहीं ऐसी नौबत आउंदी नहीं कि मनुख कोलों कोई लेखा पुछण जोगा रहे चंगे मित्रां ने मनुख नूं हमेशा सुधारिया है मित्र चंगा होए जेड़ा सामने बैठ के प्यार नाल गल समझा देवे सजना जीवन विच विकार सोधा नहीं देवे माड़ियां आदतां माड़े कर्म तेरे जीवन नूं तबाह कर देणगे ते ओ मित्र बड़ा चंगा है जेड़ा बाह फड़ के गुरुद्वारे लै आवे गुरु नानक दे दरबार विच लै आ जेड़ा जिस वेले मेरे गुरु की गल करे प्रभु की गल करे बाणी की गल करे जेड़ा मित्र ईश्वर की गल करे भगती की गल करे धर्म की गल करे ना ओदे नाल चंगा मित्र सानू संसार ते होर कोई नहीं मिल सकता असां तां इह वेखिया आम तौर ते कि जिस मित्र नाल मन परच जावे ओह चंगा मित्र है या जिस मित्र दे मिलिया कुछ चार पैसों का लाभ हुंदा होवे ओह चंगा मित्र है लेकिन महाराज कहिंदे ने ओह मित्र जिहड़ा प्रभु नाल जोड़दा है उस मित्र तों मैं अपना तन मन धन वारने कर दिया तन मन धन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोह जेड़ा मेरी प्रभु नाल सांझ पुआ दे जेड़े प्रभु नाल मिले हुंदे ने या प्रभु दे राह ते तुरे हुंदे ने ओही सानू मिला सकदे ने उत्थे साहिबां ने पावन बाण च वचन किया साहिब कहिंदे ने शर्म परयो ठाकुर वजीरा तिना देख मेरा मन तीरा जेड़े प्रभु दी दरगाह नाल जुड़े हुए ने जिन्हां दी उत्थे सुनी जांदी है जिन्हां दी अरदास तो दरगाह तक पहुंचदी जिन्हां दी सुरती बिरती प्रभु चरणा च टिकी होई मैं उन्हां दी शरण पैना लोड़दा उन्हां दा आसरा तकना लोड़ना क्यों उन्हां दी उत्थे सुनी जांदी है और बेनती करना तुम हर सेती राते संतो गुरमुखो तुहाडा तां मन रत्ता होया प्रभु नाल तुसी प्रभु रंग च रहते हो तुम हर सेती राते संतो निवाह लियो मोको पुरख विधाते मैनू भी अपने नाल लै तुरो ते निभा दो तुर तक विधाते पुरख वाहेगुरु तक मेरी भी पहुंच करा दे ओड़ पहुंचावो दाते उस दाते तक मैनू सिरे तक पहुंचा दो तुसी पहुंचो मैनू भी पहुंचा दे एहो जे मित्र दे चरनी नहीं पैना पै एहो जे मित्र तो तन मन धन वारना पै एहो जे मित्र तो सारा कुछ कुर्बान करना पै ओह भी थोड़ा साहिबां ने पावन बाणी च बेअंत वार ऐसे वचन कीते कि जे तू मैनू प्रभु की गल सुनावे ओहदे नाल चंगा मित्र मेरा होर कोई नहीं ते जेड़ा मैनू प्रभु नाल जोड़दा है ओहदे नाल मैं ऐसी सांझ पावां सीस वढ़े कर बैसन दीजै विण सिर सेव करीजै क्यों ना मरीजै जीड़ा ना दीजै जां सौ पया विडाणा जेता प्रभु तो उपरे हां प्रभु तो दूर हां ते जिंदगी जेड़ी है बोझ बन गई मारी जाई इस जिंदगी नालों जे उस प्रभु दा प्यार प्राप्त नहीं ते जेड़ा उस प्रभु दी गल सुनावे उस प्यार विच सहाई होवे संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए साहिबां ने पावन बाणी च सानू ओही

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नूं हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने।

तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है भाई मैं मंगा की, हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी सदा थिर रहे। करता तू मेरा जजुमान, एक दखना हो तै पै मांगू, देवो अपना नाम मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया है, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इन्हां विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा असीं तेनूं भुलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श, तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे

जे मनुख चंगियाई वाल तुरे ना वो अपने गुण ही गिनी जांदा। कहिंदा वेखो मेरे अंदर किन्ने गुण ने। कदी असीं परमात्मा दे गुणा वाल भी ध्यान दिता है? जे एक व्यक्ति दे गुण नहीं गिने जा सकते कि असीं परमात्मा दे गुण गिन सकते हैं? नहीं। इत्थे ये कहना पाएगा, हे परमात्मा तू बेअंत है, मेरे अंदर अवगुण बतेरे ने, मैं ते अवगुण बख्शाण आया, किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं, किछ ढंग ना मेरा, किछ रूप नहीं, मेरा ते रूप भी चंगा नहीं। हुण तुसी हैरान होवोगे के रूप केड़ा। सानू अपनी सुंदरता ते माण है, खूबसूरती ते माण है कि असी बड़े खूबसूरत आ। साहब कहिंदे ने ना भाई, इत्थे रूप है सेवा दा, किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं। कईयां नूं माण हुंदा कि मेरी जात बड़ी उच्ची है, मैं बड़ी उच्ची कुल विचो हां। साहब कहिंदे ने नहीं, इत्थे रूप है सेवा दा ते जात है नाम जपण वालिया। उच्ची कुल विच कौन ने? जिन्ना कुल सिमरन है। किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं, किछ टांग ना मेरा। हे परमात्मा मेरे कुल कोई ऐसा टांग भी नहीं। फिर कहिंदे ने क्या मुंह लै बोले गुण विहून, नाम जपिया ना। क्या मुंह लै बोले? हे परमात्मा मैं किड़ा मुंह लैके तेरे सामने आवा, किवें तेरा सामना करा? कहिंदे ने जिवें एक मित्र अपने मित्र नूं कहिंदा, मित्रा ऐ मेरा एक काम है ते तू कर सकदा, ते तू ये काम मेरा जरूर करना है। कहन लगा चंगा भाई जरूर करांगा। कुछ समा बीते है किते दोनों मित्रां दा सामना हो गया। हुण जिस मित्र ने अपने मित्र नूं काम किया सी उहनूं भी याद आ गया, ते जिसने हामी भरी सी उहनूं भी याद आ गया। हुण जिसने काम आख्या सी उह कहन लगा लै मेरा मित्र मिलिया, काम होया होना, मैं अज इहनूं पुछना, ते जिन्हें करना सी उहने कीता, कोई नहीं हुण उह अख बचांदा है। कहिंदा किते होवे ना होवे ए अख परा करे ते मैं कोलों दी लंघ जा, इहदा मेरा सामना ना होवे। जे सामना हो गया इहने मैनूं पुछना, मित्रा सुना काम कीता ही, मैं जवाब की देवांगा, की आखांगा? साहिब कहिंदे ने भाई इसे तरह उस परमात्मा अकाल पुरख ने तेरे जिम्मे एक ड्यूटी लाई सी। जदों तू परमात्मा तो आया है ना, तू संसार विच जन्म लिया है ना, माता दे गर्भ विच सैं, उदों तू परमात्मा नाल एक वादा कीता सी, हे परमात्मा एक बार संसार विच भेज, मैं तेरा सिमरन जरूर करांगा। उदों एक वादा कीता होया। कहिंदे ने हुण उह ते तू भुल गए है, ते परमात्मा दा सामना किवें करें? जदों परमात्मा दे सामने होया उहने पहले पुछना, सुना मित्रा जिहड़ा वादा कर गया सैं उह पूरा कीता ही? नाम जपिया ना तेरा, मैं तेरा नाम नहीं जपिया, मैं सिमरन नहीं कीता, जेड़ा वादा कीता सी मैं पूरा नहीं कर सकिया। साहब कहिंदे ने इसलिए

हे माधव, माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। साधु संगत हुण ध्यान देण, हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे हां, सतगुरु कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खा।

टंगे। हम पापी तुम पाप खंड। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर देसा सामने वालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा का भी नाश करी जाना है। हम ऐसे तू ऐसा। आओ अगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे कते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुरु ख्याल देंदे हुए कह रहे ने

तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी। भगत कबीर जी कहते हैं हे मेरे माधो असी के हो जाए ते आप के हो जाए। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नाही दयाल। समसर कहते ने तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है कृपालु नहीं है। मोहे समसर पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं मेरे वर्गा पापी कोई नहीं ते मेरे वर्गे अवगुण हारे दे ते अवगुण आप ही बख्श सकते हो।

मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो, मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी है, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकता है, भगत ही कह सकता है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा की याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल ए कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए, गोविंद हम ऐसे अपराधी, गोविंद हम ऐसे